0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च

चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्चतुर्विपुंसतिश्च मे मे चतुर्विपुंसतिश्चतुर्वि

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: பன்னிரெண்டாம் திருமுறை பாடியிருப்பவர் மயிலை சர்க்குருநாத தேசிகர் அவர்கள்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।